खत्र शब्दों सूर शब्दों शूद्र शब्दों प्राकृत है सर्व शब्दों एक शब्द जो जन पे हो नानकता का दास है सोए इंद्रज देव महला दूजा एक कृष्ण सर्वदेवा।

प्रभ करन करन समर्थ राम रख जगत सगल दे हथा राम समरथ शरण जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हाँ कुरवानी दास तेरे

प्रभ करन करन समर्था ही जी तेरे तू करता राम प्रभ दुख दर्द प्रम हरता राम प्रम दुख दर्द निवारखिन मह रख ले हो दीन दयाला मात पिता स्वाम सजना

0: रख जगत सगल दे हथाराम।
1: जिस पावन शब्द का पाठ आप संगत ने बड़े प्यार सत्कार दे नाल मानयोग भाई साहब होरां पासों सरवण किया है, ये पावन बचन पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब जी के मुखारबिन तो उच्चारण किए हुए वडहंस राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 578 दे उपर सुभायमान है। सतगुरु जी ने अज दे इना पावन बचना राही जो उपदेश जो सिखिया सानू बख्शी है, सतगुरु जी पहला ते आख रहे पहले पदे विच चार पदियां दा शब्द है जी, दो पदियां दा पाठ आपां संगती रूप विच सरवण कीता है। पहलां ते मालक जी ने पहले पदे विच आख्या भी अकाल पुरख जेड़ा है वह करन कारण समर्थ है, सारियां ताकतां दा मालक है और सारे संसार नूं जगत नूं वो अपना हाथ दे के रखदा है। हाथ दे के रखदा है तो भाव भी सारे जगत की संभाल करदा है। फिर आखदे ने मालक जीओ ये जिन्ने संसारी जीव ने इन्हां सारे संसारी जीवां दा करता भी तू है, इन्हां सारिआं नूं करन वाला, इन्हां सारिआं नूं बनाउण वाला, इन्हां सारिआं नूं पैदा करन वाला तू है। फिर इन्हां दे दुख दर्द नूं हरन वाला भी तू है, इन्हां सारिआं दी संभाल करदा होया आप इन्हां नूं फिर तू गुणां दे खजाने बख्शदा है, गुण बख्शदा है। इस तरह के प्रकरण ने जी जिहड़े अज गुरु साहब इन्हां दो पदियां राही बख्श रहे। सब तो पहलां तो मालक जी जिक्र कर रहे कहिंदे प्रभ करण कारण समर्था राम। हे भाई अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा है वह करण अते कारण दे समर्थ है, सब कुछ करण कारण दे समर्थ है, उहदे वर्गा दूजा कोई नहीं। हुण करण कारण दे समर्थ तो भाव भी सारी कल उहदी धारी होई है, सारी कला उहदी वरत रही है, कल उहदी धारी होई है सारी, है ना। उह सब कुछ करण दे समर्थ है। जिवें खिन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किछ पारावारा। करण कारण समर्थ है ना। खिन मात्र समें दे विच थाप भी दिंदा है, खिन मात्र समें दे विच उथाप भी दिंदा है, बनाउंदा भी है ढाउंदा भी है घटदा भी है ते विनाश भी करदा है, समर्थ है। फिर कहिंदे रख जगत सगल दे हत्था, सारे जगत नूं हाथ दे के बचा लैंदा है, बचाउण वाला भी है, सारे जगत नूं शरण देण वाला भी है ना। कोई शब्द वरत लिए रखण वाला जां रखदा है ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

नानक में परवाह है तिस तिलना तमाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगर प्रसाद। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगर प्रसाद। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगर प्रसाद। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर

जिना नाम जपया वंड सकया देख चलाई तेग वाही देख के अंडित कीता ते नाम प्यारिया सच यारिया दिख मई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां

सिखानो सखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान अंसर दान नाम दान श्री अमृत सर जिया दे दर्शन स्नान चौंकियां झंडे वंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दिसदा सहाई दा तार जिया। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है कुल दर्शन दे दाल सेवा संभाल दा दान अपने खालसा

तेस तिल ना तमई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओहंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਪੁੱਤ ਭੂਖੇ ਖਾਏ ਚਲਿਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦੇਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਹੈ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ
सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। उड़े उड़ आवे सै कौन सा तिस बाछे बजरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पर भरिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पर भरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा। सब ते आवहें सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सृजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर दया बहो संतो जी सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पैखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा। हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त बहे जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फांसी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी तब तापहें जपहें बेअंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमर शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अबर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुदे आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहे सो होई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा
तू करता सचयार मेंडा साई, जो तो भावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सवनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमगला दा मन मुगवाया, तुदया विछोड़या अमिलाया। तू दरिया सब तुझी माहे, तुझ में दूजा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खेल, बिजोग मिल बिछुड़या संजोगी में। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आक वखाणे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़े पहिले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो महो पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबियले, मान एक न चेतस मूड़ मना। हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ, नाहो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा। जेना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा। भई बराबद मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मेला साध संगत भाजे केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा हो। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्ने आहर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई। हमरी करोहा दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आभाद दे मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवैरन को आय संगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिए। आभाद मुझे उबरिए,
मरण काल का त्रास निवरीय, हो जाओ सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करिहो रक्षा। राख लियो मही राखण हारे, साहेब सन सहाय बिहारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सवलोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैन जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने। जाब उद कर्क करा करतारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा, जब आकर्क करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझे उचारे, तुम सब हीते रहते नरालम, जानत बेद बेद अर आलम। रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़े उचारत पिता, जाको पेव ना पावत बेदा। ताको कर पाहणे अनुमानत, महामूड़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहे सदा शिव, रंकार का चीनत न बिव। आव अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूपस रूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंड जेर से तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी। कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो समट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, आजुगा स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार आसिक संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता। जे असुहिताव शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को इक बार ते है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुए दाही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टह तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताकि ताप तन कमाए हरे हो,
सिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते तहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोखते रहा, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो ओवारी, सर्वठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोखते लेहो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो ओवारी, सर्वठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोखते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तर नहीं आन्यो। राम रहीम प्राण कुरान, अनेक हैं मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहो भेद गए, हम एक ना जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुम री कर, मैं ना कहो सब तो हे वखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बही गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बही गहे की लाज अस, गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा अनंत, एक ओ ओंकार सदगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सह सेती, मन वजियां वादाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइयां, शब्दो तंगावो हरी केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब मसारना, अंगीकार ओहो करे तेरा, कारज सब सवारना, समना गलना सम्रत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, अरता तेरा सब किचे है, जिस दे हैं सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा, सच्चा नाम मेरा आधारो, सच नाम आधार मेरा, जेना भुखा सब गवाइया, कर शान सुख मन आए वसिया, जेना इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दियां एह वड़ियाइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, सच्चा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे,
कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिनको सेना हम हर के लागे, कह नानक तें सुख होआ तित कर अन्न हद बाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पये सरसे पूरे गोरते जानी, सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुरे। मुंदामणि महला पंजवां, थाल विच तीन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पहुंचाए तिसका होए उधारो, एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा, तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई, सतगुर सज्जन।

आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनाशन जगदीश्वर। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो।

जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जपे कर बचित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गत जीत है जम लोक पते जय प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रत रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन वंश है जाकी सनंग सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरन समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुरकीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निसबासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भांडरयो पनदास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करयो रामदास गुरु।

0: आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहे हो परपूर सगल कट रहे हो व्यापे व्यापत देखिए जगत जान कौन तेरी गत सर्ब की रखिया कर आपे हर पत अविनाशी अभिगत आपे आप उत्पत एक है तू ही एक अन नहीं तुम पत हर अंत नहीं पारावार कौन है कर विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखन हाके बल बल बल बल सद बले हार सच सबा दीवान सच सच्चे पै धरियो सच्चा तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिर जियो संसार आप अपुल ना पुलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमलो जे कृपाल होयो गोविंद सर्ब सुख तिन हूं पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहड़ फिर जोन ना आए
1: तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्त वंत सदा सुख संपत रिद

जग और न आहे महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पदित ते।

0: त्रूपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग हस्त कमल माथे पर तरियंग अलख रूप जी लख्या न जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाइय गुर बिन मुक्त न होए गुरु नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी लहना पंथ धर्म का किया अमरदास भल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निध अप्यो अप्यो हर नाम अखै निध चोह जुग गुर सेवा कर फल लयंग बंदे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कईयंग परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन परनंग सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनंग अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव बिरंच तर ध्यान नितै जिस बेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसरे कोई पंजन गण समाथ तरन तारन प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित्त बसै
1: इक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा।

जय जयकार। जास यग अंदर मंदर भाग जुगत शिवरेता, गुरपूरा पायो वडभागी, लिव लागी मेदन पर सहता। पह पंजन पर पी निवारण, कल सहार तोहे जस भगता। कुल सोडी गुरु रामदास ताना, धर्म तुजा अर्जन हर भगता।

हर के संत सुनहो जन पाई, गुरु से विहो बेग बेगली, सतगुर सेव खर्च हर बंदो हो, मत जान हो आज के काली। हर के संत जप हो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपिया से हर हुए, हर मिलया केल के लाली। हर हर जपना जप लो चल चानी, हर कृपा कर बनवाली।